0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯆꯤꯇ꯭ꯔ ꯚꯥꯅꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤ.ꯖꯤ.ꯄꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯛꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯖꯨ ꯈꯨꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯨꯈꯦꯁ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯛꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯈꯦꯁꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯛꯁꯥꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯈꯦꯁꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯗꯤ.ꯖꯤ.ꯄꯤꯅ ꯂꯝꯗꯥꯃꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯀꯦꯝꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯈꯦꯁꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯐꯇ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 37ꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤ.ꯖꯤ.ꯄꯤ ꯃꯨꯈꯦꯁꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦ.ꯗꯤ.ꯖꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯁꯦꯁꯦꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯇꯃꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯇꯃꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏ.ꯇꯤ. ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯖꯨ ꯈꯨꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯑꯃ, ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯌꯥꯎꯕ .32 ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ ꯑꯅꯤ, AK-47 ꯑꯃ, ꯂꯦꯊꯣꯔ ꯒꯟ ꯑꯍꯨꯝ, ꯕꯦꯔꯜ ꯂꯣꯗꯤꯡ ꯒꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨ 42 ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯃꯈꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯁꯤ.ꯄꯤ ꯅꯣꯡꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯒ� ꯎꯠꯂꯧꯗꯒꯤ ꯄꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯥꯔ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃ, ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯈꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯖ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯀꯦ.ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯄꯨꯡꯗꯣꯡꯕꯝ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯒꯟꯖꯥꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ 20 ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯀꯔꯇꯥꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯔꯤꯐꯣꯝ, ꯄꯔꯐꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯝꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯦꯃꯤ ꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯨꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯥꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: एनर्जी से लेकर कनेक्टिविटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अनस्टॉपेबल है। साथियों, आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा बल्कि हर मित्र देश के सपनों के साथ है। भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलता है, इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है। भारत की आत्मनिर्भरता इंडोनेशिया के लिए, पूरे आसियान रीजन के लिए भी एक मल्टीप्लाइंग फोर्स है।
0: ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅ ꯑꯜ ꯅꯤꯅꯣꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯆꯦꯊꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯋꯥꯃ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤ.ꯀꯦ. ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯒ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯆꯦꯊꯤꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯪꯅꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏ 15 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ, ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ, ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔ, ꯄꯟꯖꯥꯕ, ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯪꯒꯥꯜꯒꯤ ꯁꯕ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯟꯕꯗꯒꯤ ꯅꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ, ꯃꯦꯘꯥꯂꯣꯏ, ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ, ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯦꯛ ꯄꯦꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯝꯒꯤ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯂꯥꯎ 90 ꯊꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯒꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝ ꯍꯦꯛꯇꯔ 5,000 ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯂꯝ

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथुकसेरी स्कूल ऑफ इजुकेशनल टेक्नोलॉजी इबोतोम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ इजुकेशन मीमा की तेंमंग मखाद पुथोक्षब थौरम थक्षी काशी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गीत के खुदल यानी शुभदा लांथक चली सोनुन गमदगी।

0: ताइबंग पाल सिदा सांगा थवाई पान बजी बकया गलोई ना मियोई ब ऐ कोई ना हिंगले मियोई बदन आप लाई ना गिचार
1: लिटल क्लिनिक नगरम ना मियाम द मतंग चुनर ब खुजु खुलाई की मतिंग ना स्पेशलिस्ट सिंग ना मखल खुदी मकी अना लाएंगे खुदोंग चाबा पीजरी 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर विद एडवांस इक्विपमेंट एडवांस न्यूरो सर्जरी केयर ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी हेड इंजरी एंड ट्रॉमा केयर स्लिप डिस्क एंड स्पाइन डिसऑर्डर्स ब्रेन ट्यूमर एंड स्ट्रोक मैनेजमेंट मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी की मतकता हेपाटो पेनक्रियाटो बाइलरी सर्जरी अमसुंग जीआई ऑनको सर्जरी laparoscopic colorectal gastric liver gallbladder and pancreas cancer amasung tumor surgeries advanced gi laparoendoscopic surgeries gi surgical endoscopy ercp gi khudong cha ba phang bi gani orthopedic surgery obstetrics and gynecology respiratory and chest medicine amasung pediatrics gi specialist doctor singa consult to bugi khudong cha ba su lai gani fully equipped le ba icu endoscopy and bronchoscopy operating microscope qsa c arm gi mating na लाइंग बगी खुदोंग चाबा फंबी गनी हेना अकुपा मरोल की दंबक लिटल क्लिनिक नत्रगा मोबाइल नंबर 8787363755 का तानबियो

शुक्रिया मेरे दोस्त। नमस्कार, स्वागत है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित आपके ही संगाई चैनल में, जिसमें आप सुन पाएंगे गीतमाला के जरिए आपके फरमाइश का कार्यक्रम अपनी होस्ट और दोस्त वैलेंटीना के संग।

दोस्तों, बधाई हो आपको। ये बुधवार का दिन, आप ही की फरमाइश का दिन, और भरपूर से मन भर के अपना मैसेजेस और मेल्स भेजते रहिएगा और हमारे कार्यक्रम को पूरा सहयोग दीजिएगा। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में ये पहला मैसेज हमें मिला है हमारे दोस्त का नाम है W. नंदो। उनके साथ हैं सुशीला, सदानंदा, दिव्या, लक्ष्मी, पार्टसोई पार्ट टू से, यांबुंग इनाउचा, जनमेनजोई थियाम, लैसांगखोंग से, थियाम राम, कवा नौरिम लेकाई से, महेंद्र वांगखिमचा, नंबोल फोजिंग से, इबो चौबाई। और ये सुनना चाहते हैं सोनू निगम के साथ अलका याग्निक की गायन में हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से। ये बहुत ही प्यारा गीत है, समीर के लेखन और अनु मलिक के संगीत से सजाया हुआ ये गीत।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

दिल है तुम्हारा, शायद ये आपका हमारा दिल भी किसी का हो सकता है, ये आपने कभी सोचा है? वैसे तो मालिक हम हैं, लेकिन दिल किसी का। समझते हैं इस दिल के गुप्तगू के बारे में। अलका याग्निक और उदित नारायण के गायन में ये गीत है, समीर के लेखन, नदीम श्रवण के संगीत में। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त आर के तंभासना के साथ एनजी रणबीर पोरुम्पा चुथेक से।

अवांग खुनो से हमारे एक दोस्त ने भेजा है, वो सुनना चाहते हैं इश्क इन पेरिस फिल्म से सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजों में ये दो गीत, जिसके लेखक हैं कौशर मुनीर और साजिद वाजिद। दोस्तों के नाम हैं डेनिस, संगीता और उनकी बेटी लंचेन बी।

अगला जो फरमाइश आई है वो है KS चित्रा और उदित नारायण की गायन में फिल्म कोई मिल गया से। गीत के लेखक इब्राहिम अक्श और संगीतकार राजेश रोशन, और इस गीत को बहुत ही मन से सुनना चाहते हैं सगोलबन विजय गोविंदा से हमारे एक दोस्त हैं RK सिमिला, और अपने परिवार वालों के साथ ये गीत सुनना चाहती है।

और अगला जो फरमाइश आई है वो आई है मेकोला अवांगलाइकाई से, आर के शांता देवी, और उनके साथ और दोस्त भी हैं पितृ बोइनाओ, और दूसरा नाम है डोलिया सुशिया। ये सुनना चाहते हैं सोल्जर फिल्म से अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर की लेखन और अनु मलिक के संगीत निर्देशन में ये गीत।

दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके खतों का, आपके मेल्स का, आपके पोस्टकार्ड्स का और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का जो आपने हमारे गीतमाला के फरमाइश कार्यक्रम को पूरा करने का पूरा पूरा सहयोग दिया। अगली बार भी इसी तरह प्यार के साथ मिलते जुलते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक संदुक चरी रेडियो क्लास चहुम हुम फुतरुक सुबह तांकता क्लास सिक्स की इंग्लिश लेशन ग्रेटनेस गोज विद सिंप्लिसिटी थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांगलवीनना संदुक चबनी

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मखल मथिल गी थौरम कया लांथोक तुना तहन जरी बसी आकाशवाणी इंफा गी एफएम संगाइ चैनल दिगिनी हौजिक पुंफम सिद लांथोक चरी मणिपुरी मतमिसे सिंह खुदोल गी अहनबा मतमिसे इसिगी सैसकपा हामोम नबा सैरेंगबा लाइश्रम नबा खुदोल तमचरी तमिनसी।

0: ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ
1: से खुनजी की लेकाय से लम से इसमु एरिया की मैम से सपोर्ट तौबीदगी कंडीशन से यौजरपन
0: एलुमनाई प्रोफेशनल फॉरेन तौर सक्सेसफुल डॉक्टर इंजीनियर डिफरेन डिफरेन प्रोफेशन कौर मोई डिसिप्लिन से मैं इंकल के तौर अखोद तौर मयम पाकसून खों सोन खोर यावायजबारे पैसा पाब खोप तब नए स्कूल अप्स एंड डाउन लेबने खोलप खोकल मैम से वाबदाबने स्टील इसोर खोरमदी खरा फगलना मैं सपोर्ट कौजदे
2: चैलेंजिंग होबसद होने पाबूंग थम्बीबसे पाबूंग इमागी चंसन पाबूंग इमागी मगुन सिंग हाइतारेको एडमायर तौजब इमादगादी फाउबोदी लेब करी करम मगुन सिंग पाबूंग कतंग हाइबियो
0: गुड हाउस वाइफ फैमिली हाइबसिद बाय डेफिनेशन फैमिली सी कोई लेर आगाम कोलकदनी इशू लेरकदनी आगामीब चाब थप केयर लोब इसोर खोरमजब अयोदा लाइ नु खोरमदना कत्न खोतन तौजब पर्सनलिटी से मीब खोब खोट तौसनबाद्रगे सिंगल हेंडेड तौबी मैं हाइनबो अफब पीब अफब लेफक सेंगे बोले कौ या पोते लकीली इमान पुन लेमीनरी आई लेतब नत्र मातबा तबूबी अनी नौना हेन अवा नुआई प्रोब्लम लेरगो खब कंसोलेसन पीस ऑफ माइन स्ट्रेस का रिड्यूस तब खोब मैम संगजेद फंगज
2: कईगमकानीपुस खुबूर की थोड़े अटोप अटोप मई पर्सनलीटी क्या सनजब फोदपे मत मनाबू सौनदे है नौ फोदरसूम सौनबसे पबूंग इमादी करम करमगे कमाय तौजानो हाईबू
1: सौनबी मरमदी फैमिली लेमीनबे तौहनिबू निपानी तौबीरकोम तौदब नाते तौ अदरगू अखोन खलबदी सौनर खनबो तोयन खनबदी नाते अनाबाद सेवेंटी सेवेंदी लुहोंग लेरपे खन चैनदना यू लापकदे
2: इमादमु लाचगे पाबूंगे इमागी मगुन गसाइ मैम सिंथाबीखरे अदुमाइन तौदना इमानासु करम करम मगुनदनो पाबूंगी मगुन सिंगद इमाना एडमायर तौबसे अमुक्ता हाइबियो
1: फै याम फै आइगी निपाना डॉक्टर ओइरोमबसे अखोइगी फैमिलीगी अदेगी आइ इसामकीसु आंगांगसिंगकीसु अदेगी कैरोइ लेकाइगीसु इमुंग मनोंगीसु डॉक्टर अमनिना अना आइगी अदे अफाफत मैम से अदुम यामना फै अदुब मबुंग पाउसु याम तप्पी मासेको कया सावगंदे मरुओइना अइना ख्वाइदेगी खल्लीसे अखोइसे इचानुपा मरीसे अइगी वखल द खनगेब कमाय तो सेमदैनो हाइबसे खनगे अखोइसे अदुम अखोइगी फेमिलीसु लाइरना हौरे इ डाक्टर फेमिलीसु लाइरबनिना इबानिसे अदुम खरा करे हाइनी ꯑꯁꯨꯕ ꯅꯣꯝꯕ ꯈꯔ ꯀꯜꯂꯒ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ. ꯑꯗ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯔꯤ ꯐꯪꯖꯔꯦ, ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯃ ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯠꯅꯤ, ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ, ꯃꯗꯨ ꯕꯤꯔꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯅꯤꯐꯨ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯔꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯌꯥꯏꯃꯁꯤꯁꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯤ, ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ ꯃꯗꯨ ꯁꯨꯗꯟꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅꯤ, ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ. ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯏꯁꯨꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ, ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯨ ꯃꯉꯥꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯏꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯏꯁꯨꯅꯨꯄꯤꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯃꯕꯣꯛ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯕꯣꯛ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ. ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯤ, ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯖꯜꯂꯦ, ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯒ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯣ ꯏꯆꯥꯒꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛ ꯇꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯝꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ. ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯧꯖꯥꯟꯕꯤꯕ ꯑꯅꯥꯌꯦꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯕꯁꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ. ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ, ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯩ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ, ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯦꯌꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯆꯠꯄ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯦꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯦꯔ ꯆꯠꯂ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ. ꯑꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ. ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯔꯤ ꯁꯦꯠꯀꯦꯔ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯠꯀꯦꯔ ꯀꯦꯅ ꯆꯠꯂꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯒ, ꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯤꯗꯣꯟ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯆꯟꯗꯣꯟ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯨ ꯕꯣꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ, ꯍꯔꯥꯎꯖꯕ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯅꯦꯝ ꯏꯀꯨꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯆꯩꯀꯣ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯦ, ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯖꯖꯅꯨ ꯃꯧꯖꯖꯅꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ, ꯆꯠꯆꯖꯅꯨ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ.
2: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯛꯇ ꯁꯦꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ.
1: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯆꯛꯆꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ. ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯠꯄ ꯆꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯦꯔꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯄꯨꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅ. ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯅꯤꯄꯥꯗꯨꯒ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯆꯠꯂꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯔ ꯏꯟꯂꯣꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧꯏ
3: ꯀꯣ.
1: ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯛꯀꯤ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯛꯏ, ꯆꯠꯂꯨ ꯆꯠꯂꯨ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯂꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯀꯅꯤ. ꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ.
2: ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ, ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯈꯪꯅ, ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯅꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏ, ꯑꯗꯣ ꯆꯨꯝꯕ ꯖꯥꯠꯂꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯎꯏꯀꯣ, ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯅ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯕ, ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯅ ꯄꯥꯈ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ. ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ. ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯗ ꯈꯣꯝꯖꯔꯒ ꯁꯣꯛꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯕ, ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯣꯡꯗ ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯅꯗꯦꯕ. ꯑꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯁꯨꯔꯛꯑꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯁꯤꯁꯨ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯔꯤ ꯄꯣꯛꯑꯦꯀꯣ, ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ. ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯏ ꯆꯠꯂꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯣ, ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯨꯁꯨ ꯅꯅꯥꯎꯄꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯀꯥꯁꯇ ꯄꯤꯖꯤꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯅꯤꯉꯨꯗꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ.
2: ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯥꯗꯒꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯅ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯃꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ.

0: मक ऑनलाइन द अप्लाई तो भी यार गनी
1: मेरी पहचान ओइना आधार ऑथेंटिकेशन तौरगा अराइब मोंगदा लॉगिन तोबियो अदोंगी मरु एबा डॉक्यूमेंट सिंग डिजी लॉकर इंटीग्रेशन तौदुना सिक्योर ओइना डिजिटली सिजन अबसु यारे
0: सेंट्रल लिमिटेड स्टेट की लेरी गवर्नमेंट सर्विस सिंग उमंग इंटीग्रेशन की मतेंगना इराई लाइन एक्सेस तोबसु यार गनी
1: अदोंना हंगनिंग बा वहांग सिंग की दमक एआई चैट बॉक्स सपोर्ट सु हपचरी मसिद नतना व्हाट्सएप गवर्नेंस की खुथांगदा अदोंगी फोन दा नोटिफिकेशन अपडेट लाखन बसु यारे
0: नबियु गवर्नमेंट की सर्विस सिंह बु मियाम द हेन नक्सिल हल्लीबा
1: ई सेवा मणिपुर
2: आकाशवाणी इंफाल की पाउ ताबिरी नासा मुक्त भारत अभियान लैवाक असिगि मियै कोटि कुलुमदो यहोनबो गमले हाइना केन्द्रगि सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मन्त्रालयन हारि मसिगि मनुंगद नहाक कोटि 300,000 मरफुमाथोय नुपी कोटि 500,000 कुनमरी अमसुंग महि लोइसंग लाख तरातरेलोम कोनसिन बंगमले केंद्रगी सोशल जस्टिस अमसुंग एम्पावरमेंट मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र कुमार हाय अभियानसी लैबाक असिबु सेंगपदा नहा सिंगु थक्सी खासी लैना अमसुंग मसा मऊ फना थमनबा पांदमदा पाइखत खिबनी मांगनाय नासा मुक्त भारत अभियाना नारकोटिक्स ब्यूरो राज्य सरकार पुलिस एनजीओ अमसुंग हॉस्पिटल सिंग अमतोइना पुन थबक तोमिनदना भारपु मयाय काबन निसा सिनदब लैबाक अमा ओहेननबनी हौजिक सानबगी पाउ केत्री मयुम प्रेमचांददगी
3: FIFA World Cup lishing ani kuntaruki quarter final match sing sanana basem sabaloitre aham no quarter final match France amadi Morocco Boston Stadium da lamba tonagani match asi lagliba irai numirki ayuk angan wapung ama makhaire sanagani France amadi Morocco English ani kunithudas pangthukhiba FIFA World Cup ki semi final da lamba tonokhiba team singni ani suba quarter final match na Spain amadi Belgium July 3 mathoi gi ahing muyai matung pungkhai chatpada Los Angeles Stadium da lamba taunagani ahum suba quarter final match na Norway amadi England Miami Stadium da tha asugi train thogi ayuk pung ani makhai da sanagani aroiba quarter final match na Argentina amadi Switzerland tha asugi train thogi ayuk pung turuk makhai da Kansas City Stadium da sanagani Bishnupur District Olympic Association na jila asugi District Administration amadi Youth Affairs and Sports vibhag ka khusamaduna ngasidagi Ahan ba Bishnupur District Olympic Haukre Youth Affairs and Sports Mantri Govindas Kontok Jumna Bishnupur District Sports Association ground da One District One Spirit Kello Bishnupur haiba wakalonda District Olympic adu haudoki games gi matang da aikhoi gi Bishnupur paumi RK Manipur sanadagi paudam ama
4: Masana Taratru Gamasi Asia Namadi Commonwealth Game Gi Gold Medalist Naurem Rosibina Arjun Ewardina Torsu Ki Loinana Laisam Sarita Asia Namadi Commonwealth Gold Medalist Na Sanaroi Singwasak Loki Kendra Taruk Laiba Zila Sida Kendra Wise Competition Tauri Sanaroi Masing Lising Sama Hena Medal Samapal Hena Official Sam Hundramga Dagi Marfu Pawada Tongan Tongan Bazila Sigi Sanapam Singh Nuvin Mangani Satak Gadauri Loinana Game Makal Asi Mari Kuring Pantokani, Akaspani Palgi Pogi Dabak DSA ground Bishnupurgi RK Manipur Sana.
3: Bishnupur District Olympic Games Asigi. Nasihobunumita football masanada oinam AC Madi Kumbi AC Panjal Ahumhum Chanaduna draw oiki. NGL Nongpok Lauren Bamashinuna Satadiba Tadat Shuba Lambamayum Nong Tol Football Festival Gi Nasi Sana Kiba Ahanba Mesta Homies FC Wangzing Amasung BYFY Yaripok Bisunaha Panjal Ahum Ahum Chanaduna draw oikre Anishuba Mesta Football Lovers Nongpok Sekmaina Wangzing United Pu Panjal Ahum Anida Thoike Sri Sri Gopal Dev Kankuna Sinduna Tatariba Tara Shuba Mangshatabam Iboyaima Amasung Puinibati Memorial League Cum Knockout Count and Out Tournament Ki Nishanakiba Mesta LSK Kankut Amadi Gopal Dev Kankut Panjal Tatruk Tatruk Chanaduna draw oikhi Seyoshunyamai Khetri Lekaina Sindhu Nesatariba Ani Shubha State Level T.S. Iboyaima Singh Memorial Hockey Tournament ki Nasi Sanakiba Taramari Chaitaramari Makhagi Nupamachagi Mesta Seyoshunyamai Wangma Khetri Lekaina EYDC Iroi Shemabu Panjal Tarahumdo Shinoda Amasung SYUC Uchekona Farm Thangwe Bunbu Panjal Tarahumdo Amada Thoike Tournament Asigi Master Kanguptana Seyoshunyamai Wangma Khetri Lekaina TWC Tabungkopu Yamalakshana Panjal Tarashinoda Thoike Thaubal District Hokina Sinduna Nupamasa Masung Nupimasagi Chahitra Mari Masung Sahitra Tret Makhagi Ahan Matagaki Hoki Coaching Camp Thaubal

ताइबंग पाल सिदा सांगा थवाई पानब जीब कया गलोइनना मिओइब आइखोइना हिंगले मिओइब दनाब लैनागी चादो हुमफुदि सांगा दिगी छंदोई खुदमोइना रेबीज बर्ड फ्लू अदुबो इचम चंब उपाय सिजनदना लैना कया असिदगी गाथोप पंगमगने सासन पाइरोडब मतुंग खुच सासेंगना हमदोपियो चानब सांगा येन चिंगब मुन्न थोंबियो मसखंगदब साना त्रगलमगी सा उरबदि मनाक चंगबीगनो फॉरेस्ट्री नत्रगा वेटरनरीगी मरिलेनब मिओइ सिंगद पाउ पिबियो सा उचेक योकपिरिब सिंगल लुना नान योकपियो आइखोइग तना थानब यात्रब मरुप सिंग असिना मसा मऊ फने हिंगलगा ताइबंग मिओइब आइखोइसु इसा फगने पाउजेनजरिबा रीजनल कोऑर्डिनेटर नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रिम्स इम्फाल

खुदल गेहूं सुवेन लो खचरीबा इसै सिके फिल्म मौनाव थोबी सैसक्लीबा सुरेनमदी सैरेंगबा रोमी मैते लुइनना सैरांगबना एके यांगोय खुदल तमचरी तामिनासी

इसी ने मपुंगोइना सेमजरीबा आकाशवाणी इंफाल की संगाई चैनल के थोरम परेंग असिदा ngasi numidang gi thoram paring asigi aroi ba thoram moiriba gate gi thoram adum gi damak khudol tamjari thoram asigi ahan ba khudol ina lokachari ba isai asigi sai sakli ba singdi udit narayanamadi sadhna sargam khudol tamjari tamhinasi

देखिए कहाँ से आई बदरा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आजकल दिल्ली के आसमान पर शिद्दत से छाए हुए हैं और बूंदें रिमझिम कर बरस रही हैं। आज जब मैं अभी आकाशवाणी आ रही थी ना, तो इन बादलों ने मुझे भी भिगो दिया। वैसे मुझे लगता है ये जो बादल है ना, ये दिल्ली से किया, धरती से किया अपना वादा निभाने के लिए आते हैं। हर साल समय पर आ जाते हैं। यही सब कुछ था, यही मौसम था जब हम तुम मिले थे। वही सब कुछ है, यही मौसम है, लेकिन तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। मौसम तो बदल कर फिर भी लौट आते हैं, लेकिन बदले हुए इंसान फिर कभी लौट कर नहीं आते। हाँ, उनकी यादें आती हैं, है ना। फिर बावरी पुरवाई चली, तुम याद आए। फिर बूंदों की पाजेब बजी, तुम याद आए। फिर कोयल बोली घर के सुनी आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी, तुम याद आई।

ये जो बादलों की रिमझिम है ना, ये काली घटाएं, ये ठंडी हवाएं, ये फिल्मी गानों में भी खूब चली हैं, खूब बरसी हैं। एक गाना जो इस मौसम में अक्सर याद आता है वो है फिल्म श्री 420 का गाना, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहते हैं कि जब शैलेंद्र ने इस गीत का मुखड़ा संगीतकार शंकर जयकिशन को सुनाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके एक अंतरे पर शंकर भड़क गए। अंतरे में लिखा था, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां। इसे सुनकर शंकर ने कहा, शैलेंद्र दिशाएं चार होती हैं, दस नहीं। फिर दोनों इसी बात पर उलझ गए, बात राज कपूर तक जा पहुंची। राज कपूर ने शंकर से कहा कि अगर दस दिशाओं वाली बात गलत हुई तो लोग शैलेंद्र को ही मूर्ख कहेंगे, इसलिए तुम्हें शैलेंद्र के काम में दखल नहीं देना चाहिए। ये गीत बना, सुपरहिट हुआ और फिर कभी किसी ने दस दिशाओं की बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। वैसे आपको क्या लगता है, दिशाएं दस होती हैं कि चार? जो भी हो, हम इसमें क्यों उलझे, हम तो वो गीत सुनते हैं, बरसात वाला।

ये जो ख्यालों की प्यार की दुनिया होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है. लेकिन अगर ये ना हो तो जिंदगी बेरंग हो जाए. ख्याल दिल को वहां तक ले जाते हैं जहां तक हाथ नहीं पहुंचते. ख्यालों में दिल ख्वाबों के रथ पर सवार होकर आसमान के पार पहुंच जाता है, तो कभी हवाओं के पंख लेकर चांद की आगोश में समा जाता है, और कभी कभी तो बादलों की चादर ओढ़कर महबूब से मिलने पहुंच जाता है. और तब जब कभी बारिश के फूल महकते हैं, तो कभी हवाओं में प्यार की खुशबू तैरती है, महक रही है जमीन रिमझिम की बूंदों से, यूं लगता है फिजाओं में प्यार का मौसम आया है.

दिल का क्या है, ये तो दीवाना है, पुकारे ही चला जाता है। लेकिन तुम हो कि गैरों से तो तुम्हें फुर्सत दिन रात नहीं है। हाँ, मेरे लिए ही वक्त मुलाकात नहीं है। नहीं है तो फिर ये कसमें वादे भी ना किया करो, क्योंकि जब ये टूटते हैं ना तो इनकी चुभन रूह में महसूस होती है। और फिर ये दिल कहता है, क्या कहता है, इस गीत में सुनते हैं।

जो है यार अपना, उसे जीते जी तो छोड़ पाना या भूल पाना आसान तो नहीं, मगर जिंदगी के सफर में चलते चलते कई चौराहे ऐसे भी आते हैं जहां से दोनों की कहानी अलग अलग मोड़ ले लेती है, और फिर दिल कहता है कि तू मुझको भूलना चाहे तो भूल सकता है, मैं एक हरफे तमन्ना तेरी किताब में हूँ। ये तमन्नाएं, आरजुएं, इच्छाएं हमारी जिंदगी को रवानी देती हैं कुछ इस तरह। फिल्म होली आई रे का ये गीत मुकेश की आवाज में।

इसी के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस चैनल पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने जैस्मिन पावलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurav Dhawanlal with my co-anchor, Prachi Priya.
1: नमस्कार, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारे समक्ष हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक संपादक ए के भट्टाचार्य। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: Thank you, Prachi. AKB, once again, welcome to the program. A quick look at the headlines first. Benchmark domestic indices shed over 2%. Sensex falls nearly 1,007. Listeners, before we dive deeper into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any final financial decision.
1: और श्रोताओं, आइए अब जान लेते हैं कि आज दिन के अंतराल में शेयर बाजार की चाल में कितनी लचक रही। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज 2% से अधिक की गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में मंदी देखी गई। सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। विस्तृत शेयर बाजार में मिडकैप 100 इंडेक्स 1.5% से अधिक लुढ़का, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले सत्र के दूसरे भाग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद कि ईरान के साथ टकराव खत्म करने के लिए किया गया समझौता समाप्त हो चुका है और वे तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते, बाजार में मंदी आई।
0: Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp sell-off today, with both the Sensex and the Nifty plunging more than 2%.

0: percent. A spike in crude oil prices, weak global cues, and renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. The Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index fell over 1.5%, while the Small Cap 100 index lost more than 2.2%. Earlier, markets opened on a negative note amid geopolitical concerns. Sentiment weakened further during the latter half of the session after U.S. President Donald Trump said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict was over, adding that he did not want to engage with Tehran.
1: सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो के शेयर 5%, मारुति के 4% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 3.5% लुढ़के.
0: All 25 sectoral indices on the BSE ended in negative zone. Among the key laggards, services shed 3.2%, PSU banks as well as mid-small private banks, quality tilt, fell more than 2.7%, and FMCG lost over 2.5%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 3,211 declined, 1,070 companies advanced, and 173 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.14 पर कारोबार कर रहा था. भट्टाचार्य जी, आज हमने देखा बाजार में तकरीब 2% से अधिक का जो एक स्लिप आया है, ये क्यों आया है ये तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन ये आगे आने वाले समय को स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या इंगित करता है?
2: देखिए, जो आज जो हुआ है, जैसे आपने भी अनुगौरा जी ने भी जो बताया
1: जी,
2: उसमें ये साफ लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न जो हैं, चिंताएं जो हैं, वो जरा और भी गंभीर हो चुकी हैं, क्योंकि ट्रंप साहब के ऐलान से विश्व को ये लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सीज फायर की बहुत पहली एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कड़ी थी, वो जरा थोड़ी बहुत वीक हो गई है, और मार्केट के सभी जो सिग्नल्स हैं वो अब नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर ये है कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो थोड़ी बहुत जो जो साधारण अवस्था जो आ गई थी, वो फिर वही पुरानी स्थिति में पहुंच जा सकती है, जो तेल के मार्केट लिए ठीक नहीं है. और जो देश पर्टिकुलरली जो एशिया में जो देश हैं जो तेल के आयात के ऊपर काफ़ी निर्भरशील हैं, उनके लिए ये खबर ठीक नहीं है. उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी जो उपलब्धि की जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें बाधा पहुंचेगी. तो हर तरह से देखें तो ये स्टॉक मार्केट ना कि ये शुरुआती तो विश्व की स्टॉक मार्केट से हुई थी, और पर इसका जो प्रभाव जो है वो भारतीय स्टॉक मार्केट में भी हुई है, रुपए में हुई है, क्योंकि रुपए में जो थोड़ी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था पिछले कई दिनों में, वो आज लगा कि काफ़ी डिप्रिशिएट कर गया, क्योंकि भारत की जो अगर तेल का दाम अगर फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारी जो जो डॉलर की डिमांड होगी वो सप्लाई से थोड़ा बढ़ जाएगी. तो उसी सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट एशिया का जो जो वातावरण जो है उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा निर्भरशील है. उसी लिए जो जो डोमेस्टिक मार्केट की जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस जो है वो आज की तारीख में इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट निर्भरशील हो चुकी है. तब भी अगर आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अगर झुक के देखें, अगर अंदर जाकर देखें, तो आपको ये लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो जो समस्याएं जो आ रही हैं वो जो तेल के दामों के ऊपर ज़्यादा सेंसिटिव हैं निर्भरशील हैं उनकी ज्यादा, जैसे कि इंडिगो
1: जी।
2: जैसे आपने कहा इंडिगो की शेयर मार्केट के काफी नीचे आ गया क्योंकि वो तेल इस्तेमाल करती है, ETF के दाम अचानक बढ़ जाएंगी तो उसके सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी में खत्म आएगी। उसी तरह जो मिड कैप स्टॉक्स जो हैं, जो पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी रिकवरी उनकी हुई है, आज उनकी पिटाई हुई है। स्मॉल कैप में उतनी ज्यादा नहीं,
1: लार्ज कैप में,
2: लार्ज कैप में हुई है, पर लार्ज कैप में जो उनको जो संभालने की स्थिति, संभालने की जो एक एबिलिटी है वो मिड कैप में उतना नहीं है,
1: उतना नहीं है।
2: तो इसीलिए मिड कैप की जो रिकवरी हुई थी वो काफी न्यूट्रलाइज आज के स्टॉक मार्केट में ये हमें दिखने को मिल रहा है। और मुझे जो लगता है कि अगले सप्ताहों में या अगले महीनों में हम सिर्फ इसी चीज को देखते रहें, जो भारतीय कंपनियां जो हैं उनकी स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस काफी हद तक निर्भरशील रहेगी किस तरह से जो वैश्विक वातावरण की गति किस तरफ जा रही है।
0: So this, I like the use of the word elan that you have made. It's like a declaration only.
2: Yeah.
0: So this statement by President Trump, which has come in, do you think it's also going to further impact the inflow and outflow of foreign funds into our market?
2: That will have a there will be some impact, but what the bigger impact will be, to what extent the Fed responds to this deepening of the tensions. Hypothetically, the inflation rate in the US is slightly elevated. Now, if it is elevated, it's likely that in the next policy review, the new Fed chairman might decide to increase the rates. Now, if they do that, then it is bad news for us. So money will flow out.
0: Right.
2: Already, we are seeing that India's ranking in gross FDI has gone up, but so has India's investment abroad. So what is happening is that while India continues to get a lot of gross FDI, but when it comes to the net FDI, which matters for our external sector and the impact on the rupee, our net FDI is not doing very well. So Indians are now investing abroad to also maybe to shield and provide a little safeguard to their overall investments in a global market. So I don't think that we should worry very much on our investments, because on what's really happened in the Invest Asia, we should worry more how the Fed reacts to it, maybe in the next month or two.
0: Right. So this volatility is going to, of course, remain not only in Indian markets but across the world. Now, if you're saying that the outflow of Indian funds into foreign markets has also increased and hence the gap is not so much for the retail investor, because investment also in foreign funds, there are boundaries to that, there are limits. So basically HNIs would be investing because they have the resources and probably the view also and information to invest across. But for the retail investor in India, it's highly volatile, whether it's in India or out. And they are sitting on some very good shares, which despite waiting, and it's like patience is a restless bird, the valuations are going to take some time, and the rate at which they're falling, people wonder whether the valuations will ever, or the prices will ever reach their purchase price. Well, what should they do?
2: This is the time of any stock market investor's journey when he cannot look at things on a day-to-day basis or on a weekly basis or even on a monthly basis. If you are a trader, if you are a punter, you're making your living out of trading, then it's a different matter. But if you are an investor for building your asset base for your old age or something like that, then I would say the time is not yet ripe to keep investing or disinvesting from the market. It's a very, very important time where retail investors must realize that the best safety lies in staying invested and not trying to panic or pull out your money, because this is the time when you might get shortchanged by the sharp fluctuations in the market.
0: Right.
1: श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया के बाजार की तरफ. एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.3% से अधिक, जापान का निकेई 2% से अधिक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.5% गिरा. वहीं हांगकांग का हैंगसेंग 3%, ताइवान का ताइएक्स लगभग 0.5% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% बढ़ा. भट्टाचार्य जी, हमने पिछले ही महीने देखा कि कॉस्पी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था और अभी हम देख रहे हैं कि कॉस्पी में एकदम मेजर करेक्शन, 20-22% तक उसमें गिरावट देखने को मिली है. ये वैश्विक स्तर पर ये किस तरफ का इशारा है, ये क्या हमें दर्शाता है?
2: जो मैंने पहले जो कहा था
0: जी,
2: कि जो मार्केट्स तेल के आयात के ऊपर अधिक निर्भरशील हैं, उनके लिए ये दौर काफ़ी पेनफुल रहेगा. और यही आज का मार्केट जो कॉस्पी का जो मूवमेंट करीबन 5.5% का गिरावट दर्शाता है. कोरिया कहिए, जापान कहिए, इवन चाइना जो वेस्ट एशिया के तेल के ऊपर काफ़ी निर्भरशील है
0: जी.
2: उनके लिए जो वेस्ट एशिया में जो हुआ, जो ट्रंप साहब का जिस ऐलान जो हुआ, उससे मैं समझता हूँ कि इन देशों के लिए और भारत के लिए भी एक एक एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है. हालांकि हमारे देश में हमने जो तेल को जो हमने मैनेजमेंट करने की जो हमारी पॉलिसी है, हम ज़्यादा क्विक रिएक्शन न देकर हमने ओवरऑल मैनेजमेंट का एक सिलसिला रखा है. और ईरान के साथ भी बात कर हमारी काफ़ी जहाजें वहाँ से आ गई हैं. पर इन देशों में जो इनका इम्पैक्ट रिटेल मार्केट में या प्राइस लेवल में हुआ है, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उनमें ज़्यादा हुआ है. और इसीलिए स्टॉक मार्केट को भी ये यही चीज़ दर्शा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो जो जो एक गार्डरेल कह सकते हैं हम, जो सरकार ने तेल कंपनियों को और जो उपभोक्ताओं को दिया है, वो उन मार्केट में ये अवेलेबल उपलब्ध नहीं है. इसीलिए उनके स्टॉक मार्केट में जो हलचल मस्ती है वो ज़्यादा मस्ती है और हमारे स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि इम्पैक्ट थोड़ा सीमित रहता है.
0: So even for the US market, the Fed results, what the Fed is going to say is going to play an important role.
2: Oh yes, absolutely. I think you are absolutely right. It will have an impact. The job market is under stress, not just for the oil, but also for the AI. You know, what has really happened is that in this West Asian war debate and discussion, we have almost forgotten how the world economy is going to be or has been already been impacted by the advent of artificial intelligence. So therefore the AI is going to have a major impact, and the stock market is yet to fully absorb the impact of the advent of AI in various areas. So whether it is artificial intelligence or whether it is a super intelligence or is a general intelligence, so in every way we are yet to see the full impact of the changes in the global economic order.
0: Right, so global economic order, I think it's layered, geopolitics,
2: absolutely,
0: every country's domestic situation, yes, interdependence.
2: Yeah.
0: It's really layered, and we can't see a directed because of this is happening. There
2: absolutely
0: are many factors.
2: Absolutely.
0: Right. We move on to our next story. Listeners, outstanding credit extended by non-banking financial companies, NBFCs, against gold jewelry surged nearly 70% on an annual basis in May this year, marking the fastest growth among all lending segments. Outstanding loans against gold jewelry stood at nearly 3.2 3 lakh crore rupees at the end of May, up from over 1.94 lakh crore rupees a year earlier. This is as per the latest data on sectoral deployment of outstanding credit by NBFCs, including housing finance companies, released by the Reserve Bank of India for the first time.

0: घटी है पर अभी भी गैप है और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश में वो कैसा होता है। पर एलिनो से हमें संभल के और मेजर्ड अप्रोच लेना चाहिए और सरकार जो जो जो स्टेटमेंट जो आ रही है तो वो लग रहा है कि पूरी तरह से सचेतन है और लोगों को चेतावनी दी जा रही है जिससे कि वो ठीक तरह से इसका प्रयोग करें।
1: जी, इन सम मोर न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया बिगिंस टुडे, ड्राइविंग डीप इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स विद अ फर्म फोकस ऑन वाइब्रेंट डायस्पोरा ब्रिजिंग बोथ नेशंस। वी हैव अ रिपोर्ट।
2: The momentum of the economic engine of the India-Australia relationships are set to be further boosted with tomorrow's high-stakes engagement. A central highlight of the Melbourne itinerary will be the high-profile India-Australia CEOs Forum, where Prime Minister Modi will meet corporate and business leaders from both hemispheres to catalyze fresh investment pipelines. Furthermore, tomorrow's highly anticipated bilateral talks with Australian Prime Minister Anthony Albanese are expected to give a massive boost to the economic ties of both nations. Akash Pani News, Suhas Ram from Melbourne.
1: So it could be a visit that holds significance for both India and Australia in these times, anchoring each other?
0: Oh yeah, absolutely. I mean, please remember that Australia is India's fifth largest trading partner. We also have a discussion going on with the Australian government for a comprehensive economic cooperation agreement. And we have a lot of investment coming to India, and India also invests a lot in Australia. So therefore, it's a relationship with potential gains for both the countries. The early doubts have been ironed out and resolved. And if the Comprehensive Economic Cooperation Agreement once again gets resolved and we get into a deal, my sense is both the economies will benefit, and strategically also, since Australia is located geographically in an area which is the Indo-Pacific zone, it's a very, very important message that the globe, the world will receive if India and Australia come together with deeper economic relationship.
1: Absolutely. In crude oil prices, global crude oil prices rose more than 4% today amid renewed fears of supply disruption. Brent crude was trading over 4.6% up at $77.61 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 4.5% up at $73.64 per barrel when reports last came in. So this elan, this announcement that came, touched a raw nerve for crude oil, because it's really just...
0: Well, you know, it is still, to my mind, the Brent crude oil is still in a zone that should cause us concern, but not should not be seen as an alarm bell.
1: Okay.
0: It's important to keep a watch on it, build more reserves in the country, and reduce our dependence on imports. But as of now, $73 is not something that is one should be alarmed, but it is cause for concern.
1: Right. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.3% down at 1,43,930 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.8% down at 2,24,680 rupees per kilogram a short while ago.
3: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 1.3% ghatkar 1,43,536 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi 2.8% ludhakkar 2,24,293 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। महोदय, क्या सोने और चांदी की जो कीमतें हैं, स्पेशली जो सोने की कीमतें हैं, उनमें हमें अभी और
0: सरकार ने दो तीन जो निर्णय लिए थे पिछले एक महीने में, जो कस्टम ड्यूटी का जो इंक्रीज कर दिया गया था, उससे सोने के दामों में तो जरूर एक प्रभाव तो हुआ है। उसी के लिए मैं, और सेकेंडली जो ग्लोबल मार्केट जो सिचुएशन जो है, उस तारीख, आज की तारीख में सोना या चांदी की जो लुभावनापन जो था वो थोड़ा कम आया है, और इसीलिए ये दाम कम
3: आए हैं। भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे सवालों के, तमाम सवालों के जवाब देने के।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: एब्सोल्युटली एकेबी, थैंक यू सो मच। एंड नाउ A quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices shed over 2%. Sensex falls nearly 1,700 points. Nifty settles below 23,900. Asian stock market indices end on mixed note. And global crude oil prices surge. That's all for today. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन में आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से आवाज लता मंगेशकर की।

आपको पता है जोहरा जमी का मतलब क्या होता है? नहीं, जोहरा का अर्थ होता है वीनस प्लेनेट, यानी शुक्र ग्रह, आसमान का सबसे खूबसूरत चमकता हुआ सितारा। प्राचीन रोमन सभ्यता में वीनस को सुंदरता और खूबसूरती का प्रतीक माना गया है। जबी का अर्थ होता है माथा, तो अब से आप भी अपनी प्रियतमा को जोहरा जबी बुला सकते हैं। फिल्म होली आयरी से ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

ये तमन्नाएं आरजुएं हमारी जिंदगी को रवानी देती हैं इसलिए जिंदगी में तमन्नाओं का होना बहुत जरूरी है ये और बात है कि अक्सर ये तमन्नाएं पूरी नहीं होती लेकिन जिंदगी के हर मरहले में ये किसी न किसी तरह मौजूद जरूर रहती हैं और जब कभी ये तमन्नाएं पूरी होती हैं ना तो दिल गुनगुना उठता है क्या ये गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से

0: इस गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार। आज
1: की नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। भारत और म्यांमार ने सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में संपन्न हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और अन्य संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि म्यांमार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के उप मंत्री मेजर जनरल मिंथू ने किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में निलिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities Claire O'Neill upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar yesterday called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khaled Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait, Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al Sabah for stronger and mutually beneficial India-Kuwait cooperation. Dr. Jaishankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al Saleem Al Sabah. The External Affairs Minister spoke about defence industry cooperation and maritime security. India and Russia yesterday reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said that the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs, C.B. George and Deputy Foreign Minister of Russia, Dmitry Lubinsky, co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestation, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups, and their proxies and affiliates. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, yesterday conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket, LRGR, at the Integrated Test Range, Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometers. The Pinaka LRGR rocket is designed by Armament Research and Development Establishment in association with High Energy Materials Research Laboratory with support from Defence Research and Development Laboratory and Research Centre, Imarat. Defence Minister Rajnath Singh has

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

जमीन आसमान फिल्म से आपने ये गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। इस मौसम में मौसम के सिवा और क्या बात हो सकती है। और सच भी तो है, जब बादल आसमान पर अपनी चादर बिछा दे, ठंडी हवाएं खिड़कियों को सहला जाएं और बारिश की बूंदें अपनी मधुर ताल छेड़ दें, तब हर बातचीत का विषय भी यही मौसम बन जाता है। खिड़की के पास बैठकर दूर तक फैली हरियाली को निहारना और साथ में पुराने सुरीले गीत, बस यही तो है सुकून का दूसरा नाम।

लवर्स फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। मौसम की अपनी एक अलग ही जुबान होती है, कभी ये रिमझिम फुहारों में मुस्कुराता है, कभी ठंडी हवाओं में कोई भोली बिसरी याद जगा देता है, तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच दिल की खामोशी में सुनाई देने लगती है।

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने गाना सुना अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में. गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने. ऐसे लवली लवली मौसम में दिल भी कुछ हल्का हल्का हो जाता है, होठ अनायास गुनगुनाने लगते हैं, चाय की हर चुस्की सुकून का एहसास देती है और पुराने सदाबहार गीत यादों की खिड़कियां खोल देते हैं. हर धुन जैसे बारिश की बूंद बनकर मन की धरती को भिगो जाती है.

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, एहसास भी बदल देते हैं। हवा का हर झोंका जैसे कोई प्यारा सा पैगाम लेकर आता है। बादलों की हर आहट दिल की धड़कनों में एक नई लय जगा देती है और रिमझिम बरसती बूंदें मानो जिंदगी की भागदौड़ को कुछ पल के लिए थाम लेना चाहती हैं।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कुछ मौसम मंजिल से ज्यादा सफर को खूबसूरत बना देते हैं। ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर गुजरती हैं, बादल आसमान पर अपनी कहानी लिखते हैं और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा हो। ऐसे मौसम में कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, रास्ते अनजाने जरूर होते हैं लेकिन डर बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि हर मोड़ एक नई मुस्कान, एक नया एहसास और एक नई याद अपने साथ लेकर आता है।

बरसात की एक रात फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 56 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद को भी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है गीत सुहानी मैं हूं राखी आपके साथ

बरसात फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने बरसात एक ऐसा मौसम जिसने बॉलीवुड के गीतकारों और संगीतकारों को हमेशा से प्रेरित किया है इस भीगी रुत पर हिंदी सिनेमा में अनगिनत गीत रचे गए कभी रिमझिम पुहारों में प्यार की खुशबू घुली तो कभी बरसती बूंदों ने बिछड़ने का दर्द बयान किया कहीं सावन ने दिलों को मिलाया तो कहीं बारिश ने यादों को और भी गहरा कर दिया सच्ची तो है बॉलीवुड में बरसात पर लिखे गए गीतों की दुनिया जितनी विशाल है उतनी ही दिलकश भी

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने बरसात ये सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एहसासों का सबसे खूबसूरत नाम है जब आसमान से गिरती बूंदें धरती को छूती हैं तो जैसे हर ओर एक नई धुन एक नई खुशबू और एक नया जादू बिखर जाता है शायद यही वजह है कि बॉलीवुड ने भी इस मौसम को हमेशा खुले दिल से अपनाया है वैसे यही कारण है कि जब भी बारिश की पहली बूंद गिरती है तभी अचानक से कोई ना कोई फिल्मी नगमा होठों पर आ जाता है कभी मन झूम उठता है कभी दिल यादों की गलियों में निकल पड़ता है तो कभी कोई मधुर धुन इस मौसम को और भी हसीन बना देती है

0: काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने रिमझिम की तराने लेकर आई बरसात और साथ लाई भीगी भीगी यादें महकती हवाएं और दिल को छू लेने वाले एहसास बारिश का मौसम जब भी दस्तक देता है तो प्रकृति का हर रंग जैसे और भी निखर उठता है ऐसे ही मनभावन मौसम को सिरों सुरों में पिरोता ये खूबसूरत नगमा जो अभी आपने सुना वाकई रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात
1: ओ सजना

मुबारक फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बारिश की भीनी भीनी खुशबू, पत्तों पर ठहरी ओस, मिट्टी की सौंधी महक और मन को छू लेने वाली ठंडी हवाएं, जैसे प्रकृति ने चारों ओर संगीत बिखेर दिया हो, ऐसे ही सुरमय और मनमोहक मौसम का एहसास कराता है ये प्यारा गीत जो अभी आपने सुना। इसकी धुन और बोल बरसात की हर बूंद को एक मधुर एहसास में बदल देते हैं।

श्री 420 फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने

वक्त हुआ है 1:33 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

उसने कहा था फिल्म से आपने ये गाना सुना तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने बारिश बारिश और ये प्यारे प्यारे तराने कानों में रस खोलते दिल में उमंग जगाते ये प्यारे प्यारे तराने

चोरी चोरी फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में बरसात का जिक्र हो और हिंदी फिल्म संगीत की बात ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है कभी भीगी सड़कों पर प्रेम ने दस्तक दी थी तो कभी सावन की फुहारों ने बिछड़ने की टीस को शुरू में ढाल दिया था 50 और 60 के दशक

बरसात की रात फिल्म से आपने ये गाना सुना इसे गाया मोहम्मद रफी ने इसको लिखा साहिर ने और संगीत दिया रोशन ने कुछ बारिशें सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि जिंदगी भर के लिए याद बन जाती हैं कभी भीगी हुई राहें कभी ठंडी हवाएं तो कभी किसी अपने का साथ बरसात अनगिनत लम्हों को हमेशा के लिए दिल में बसा देती है

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी और आशा की आवाज में एस एच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने जब दिल में मोहब्बत की पहली दस्तक सुनाई देती है तो हर बादल दीवाना लगता है हर फिजा गुनगुनाने लगती है और हर मौसम में एक नई ताजगी उतर आती है

नौजवान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में सुनिए समाचार ठीक आप 2 बजे सुनेंगे समाचार और 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों की उनकी उपज को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। पाकिस्तान की कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिमी समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमरीकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया के पुनर्निर्माण

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ रात सुरमई हो तो हर एहसास जैसे और भी गहरा हो जाता है चांदनी की हल्की हल्की रोशनी ठंडी हवा के झोंके और दूर कहीं बजते पुराने गीत ये सब मिलकर मन को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं

कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर नए लगते हैं। ये भी एक ऐसा ही सदाबहार नगमा है, जिसमें प्रेम की मासूमियत, साथ निभाने का विश्वास और जीवन के सफर की मधुर लय सुनाई देती है। गाइड फिल्म का गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम की तड़प, समर्पण और इंतजार की गहरी भावना छलकती है इस गीत में। ये एहसास दिलाता है कि जब कोई अपने प्रिय के बिना अधूरा महसूस करता है तो उसका मन उसी के स्नेह और साथ की प्यास से भरा रहता है।

अभिनेत्री फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 26 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है
1: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: कोई किस्मत हमसे खुद से हम।
1: शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा कवि नीरज ने और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। प्रेम कभी मुस्कान देता है, कभी इंतजार, कभी सपनों को रंग देता है तो कभी यादों की हल्की सी कसक छोड़ जाता है। ये एहसास इंसान को बदल भी देता है और सवार भी देता है। शायद इसलिए कहा गया है कि प्यार अपने रास्ते खुद चुनता है और अपनी ही तरह जीवन को नए रंग दिखाता है।

तेरे मेरे सपने फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियां अक्सर बिना दस्तक दिए चली आती हैं जब प्रेम अपने साथ नए सपने नई उम्मीदें और नई किलकारियां लेकर आता है तो सचमुच लगता है जैसे जीवन की बगिया महक उठी है

अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने

वक्त हुआ है 2:43 और ठीक 49 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुरमई रात की खामोशी में जब कोई धुन गुनगुनाती है हर भूली बिसरी याद मुस्कुराते हुए लौट आती है

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। हर बीतता पल उम्मीद को थोड़ा और गहरा कर देता है और हर आहट पर दिल यही सोचता है कि शायद अब वो आ जाए। रहना बीती जाए शाम ना आए, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उस बेचैनी और विरह का

सफर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमेरिकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया की पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार है। इस फैसले को लागू होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस 45 दिनों तक इसकी समीक्षा करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अग्रसर दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11:13. मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज. तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब. दोस्तों, रात के इस तन्हाई में हम और आप मिलकर चलेंगे एक बेहद खूबसूरत सफर पर प्यार मोहब्बत के. उन गुजरे दौर के उन दिनों को हम याद करेंगे, सुनहरे दौर के उन नगमों को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं. ये वो दौर है जहां पर इमोशन भी है, मोहब्बत भी है, तकरार भी है और कुछ अनोखी कहानियां भी हैं. तो गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और सदाबहार बेहद खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं और आज के इस सफर का आगाज करेंगे मौसम की नज़ाकत को देखते हुए ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ. और वो नगमा है 1959 में आई फिल्म दिल देखे देखो से. आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की. इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत है उषा खन्ना का.

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म दिल देखे धोखे से। ये नगमा था 1959 की फिल्म से और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कई बार एक ऐसे मौके आते हैं जब इंसान अपनी तमाम मुश्किलात तमाम परेशानियों को दूर कर प्यार मोहब्बत की दुनिया में कदम बढ़ाता है और वह कदम कई बार इतने आगे चले जाते हैं कि फिर वापस मुड़ना मुश्किल होता है। हालांकि दूसरी तरफ से अगर वैसी बात ना हो तो फिर ये परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है इस खूबसूरत गीत के संगीत के सफ़र में जिसका नाम है हमराही। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूँ आपके साथ फिरोज़। और अगला नगमा एक ऐसा ही है मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में एक बार फिर से इन दोनों महान गायकों की जुगलबंदी इस गीत को और भी ख़ास बना देती है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा नगमा फिल्म मेरे सनम से। और ये फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में विश्वजीत, आशा पारेख, मुमताज और प्राण वगैरह थे। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है हम सबके प्यारे हम सबके चहेते ओपी नैयर साहब ने।

आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में ये नगमा था फिल्म मेरे सनम से, और ये फिल्म आई थी 1965 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल से जी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम और आप मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सुनहरे दौर के नगमों के इस सफर पर, और मैं हूं आपका हमराही फिरोज। तो आइए सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। एक बार फिर से मोहम्मद रफी साहब, लेकिन इस बार उनके साथ हैं लता जी। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रोशन साहब ने, और ये नगमा है 1963 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म ताजमहल से। एम सादिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बेहद खूबसूरत अभिनय किया था इन तमाम कलाकारों ने। प्रदीप कुमार, मुमताज, जहांगीर के रूप में रहमान, जीवन, वीना नूरजहां, जबीन और अन्य कलाकारों ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं रफी साहब और लता जी की आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है और रोशन साहब का संगीत है। जो वादा किया है निभाना तो पड़ेगा। आपने भी प्यार और मोहब्बत में इस तरह के वादे जरूर किए होंगे।

एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 3:33 और 20 सेकेंड और ये महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब एक बार फिर से। दोस्तों कभी आपने ऐसा सोचा है या कभी ऐसा हुआ है कि आप जहां भी जाएं किसी की याद किसी की शरारत या किसी का ख्याल आपका पीछा ही ना छोड़े। बस इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश करता है हमारा अगला ये नगमा। और ये नगमा है बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो 1963 में आई थी चोरी चोरी। फिल्म चोरी चोरी का ये मशहूर नगमा है जहां मैं जाती हूं उसके बोल लिखे हैं मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब ने और जिनके अल्फाज सीधे दिल में उतर जाते हैं और जब इन अल्फाज को अपनी जादुई आवाजों से सजाए लता जी और मन्नाडे साहब तो हर सुर एक नई मुस्कुराहट बिखेर देता है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इसको संगीत से सजाया है हम सबके प्यारे शंकर जयकिशन साहब ने।

लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था फिल्म चोरी चोरी से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। दोस्तों कहते हैं जिंदगी का असली रंग तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब हर आवाज एक दूसरे का साथ दे और हर दिल एक ही धड़कन पर धड़कता हुआ महसूस हो। हमारा अगला भी गीत कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आता है, मेल मिलाप, अपनापन और एकता का पैगाम। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, 1960 में आई इस फिल्म का ये यादगार गीत है। इस नगमे की सबसे बड़ी खासियत है इसकी शानदार गायकी, इसमें अपनी आवाजों का जादू बिखेरा है लता जी, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर साहब ने। जब इतने सुर एक साथ गूंजते हैं तो गीत सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। तो आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं इसी बेहद खूबसूरत नगमे को, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से, और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के निर्देशक थे राधु कर्माकर और राज कपूर साहब, पद्मनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पालेसकर वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए उसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये लगभग था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। आवाजें थी लता जी, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर वगैरह। और ये फिल्म आई थी 1960 में और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, और आज मैं हूं आपका हमराही फिरोज। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की दुनिया में कुछ इजहार शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से होते हैं और कुछ सुरों से होते हैं। जब दिल अपने जज्बात बयान करता है तो हर धुन एक नई दास्तान बन जाती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा आज की इस महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म आई मिलन की बेला से। ये फिल्म आई थी 1964 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसके दिल को छू लेने वाले बोल लिखे हैं शैलेंद्र साहब ने और इसकी मनमोहक धुन तैयार की है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। इस गीत को अपनी जादुई आवाजों से अमर बना दिया है मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने। दोनों की बहुत ही मधुर जुगलबंदी इस गीत को सुनने वालों के दिल में हमेशा के लिए बस जगह बना देती है। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सनम तेरे हो गए हम। फिल्म आई मिलन की बेला गाया नगमा था रफी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। अगर सुनी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गोल्ड एनेरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत युगल गीतों के साथ हम हाजिर हैं जो क्लासिक नगमे हैं वो आपकी खिदमत में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत की सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कभी कभी दिल की बातें अल्फाज से नहीं बल्कि सिर्फ एक मुस्कान एक नज़र और एक कुछ खामोश इशारों से समझ में आ जाती है। हमारा अगला जो नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी कुछ ऐसा ही प्यार की खूबसूरती को बयान करता है और ये नगमा है फिल्म कश्मीर की कली से। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस गीत को लिखा है एसएच बिहारी ने और अपनी यादगार धुनों से सजाया है ओपी नैयर साहब ने। इस गीत में अपनी मधुर और दिलनशी आवाजों का जादू बिखेरा है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी साहब ने। तो इन दोनों की बेहद खूबसूरत आवाजें आपके खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आपके लिए।

फिल्म कश्मीर की कली के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए इजाजत हमराही से. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 4:10 पर लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा. तब तक के लिए नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। अमरीकी सेना ने कहा है कि वे ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। यह हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों से युद्धविराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा तनाव से बड़े युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इस बीच ईरानी मीडिया ने देश के दक्षिणी तटीय शहरों में कई विस्फोटों की खबर दी है। हालात को देखते हुए क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi arrived in Melbourne, Australia yesterday on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australia counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. India has expressed deep concern over the recent attacks and escalation of tensions in West Asia. The External Affairs Ministry said that these developments risk undermining regional peace, security and stability. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, and ensure protection of civilians as well as the uninterrupted flow of energy supplies and commerce. New Delhi has urged the parties to return to dialogue and diplomacy to achieve a peaceful and lasting solution to the conflict. This comes after the US carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. On the other hand, Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, said it had responded to the strikes by targeting US assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national level meeting between India and Myanmar concluded yesterday in New Delhi. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency, narcotics trafficking, arms smuggling, human trafficking, wildlife trafficking, cybercrime, and other forms of organized crime. They also agreed to enhance intelligence sharing and operational coordination and undertake capacity building initiatives to address shared security challenges effectively. The Indian Space Research Organization, ISRO, has successfully conducted a critical integrated main parachute airdrop test, IMAT, for the Gaganyaan missions at the Aerial Delivery Research and Development Establishment, ADRTE, drop zone in Shiopur, Madhya Pradesh. ISRO said that the objective of the test was to qualify the main parachute for its structural integrity and design margins under the maximum expected load conditions in the first uncrewed Gaganyaan G1 mission. ISRO highlighted that this was the fifth test in a series of integrated main parachute airdrop tests to qualify the critical main parachute for the Gaganyaan mission. Indian Navy informed that its aerial vehicle Drishti 10 has crashed off Porbandar airfield during a training sortie yesterday. In a social media post, the Indian Navy said that no injury or loss of life has been reported. It said that the cause of the incident is being investigated. The National Testing Agency, NTA, has released Advanced City Intimation Slip for CSIR UGC NET, June 2026. The exam will be held on the 17th and 18th of this month. Students are advised to download this slip from the official website www.csirnet.nta.nic.in to know allotted exam city. Andhra Pradesh government yesterday provided ex gratia of 10 lakh rupees each to the families of the six fishermen who went missing after their fishing boat sank off the Vishakhapatnam coast. State Excise and Mines Minister Kullu Ravindra, along with District Collector Abhishek Kishore and Fisheries Commissioner Ram Shankar Naik, handed over cheques to the families of the Harbour Mechanized Boat Association building in Vishakhapatnam. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court yesterday. And that is the end of this news bulletin.

जरूरी है और जिंदगी को जीने के लिए सब कुछ सकारात्मक होना बहुत ही अहम है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी नगमे से आज के सफर का आगाज करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और यह नगमा है फिल्म जागते रहो से। फिल्म जागते रहो का ये यादगार नगमा, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सलील चौधरी ने, आवाजें मुकेश साहब की, और यह ऐसी आवाज है जो दिल को सुकून देने वाली है और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली यह आवाज़ है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हिंदी सिनेमा में ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ था। ये गीत हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में हर लम्हा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए छोटी छोटी खुशियों की कदर कीजिए, अपनों के साथ बिताए वक्त को सजोएं और हर नए दिन का इस्तकबाल मुस्कुरा कर कीजिए, यही तो ज़िंदगी की असली खूबसूरती है।

0: सच है क्या सब सच।
1: जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है और ख्वाब में झूठ क्या सच क्या। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है और इस जिंदगी को हमेशा हंसकर गुजारना हम सब की जिम्मेदारी है। और जब कोई खास आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर ये जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं कि जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर

बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि सुकून तो कई बार छोटे छोटे लम्हों में छिपा होता है। किसी अपने का साथ, भरोसे का एहसास और दिल से निकली एक मुस्कान, यही पल जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। इसी प्यार जज्बे को अपने सुरों में समेटे हुए हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म वक्त से। आवाजें हैं आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की।

जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का ये नगमा आशा जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना, कभी सीधी राह पर चलाती है तो कभी किसी मोड़ पर नई सीख नई उम्मीद दे जाती है। नए लोग और नई उम्मीदों से मुलाकात करने पर हमें कुछ अलग ही अनुभव होता है, इसलिए हर मोड़ को मुस्कुराकर अपनाइए, क्योंकि कौन सा लम्हा आपके जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाए कोई नहीं जानता। इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयान करता है फिल्म मेरे हमसफर का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, और ये फिल्म आई थी 1970 में। इस नगमे को अपने बहुत ही मधुर आवाजों से सजाया है मुकेश और लता जी ने, इसके बेहद खूबसूरत बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। तो आज के इस खूबसूरत सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आज की राह थोड़ी मुश्किल है तो मायूस बिल्कुल ना हो। हर सफर में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां से नई मंजिलें दिखाई देती हैं, बस हौसला बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि उम्मीद हमेशा आगे बढ़ने की वजह देती है। और जब ऐसा नगमा हो किसी राह में किसी मोड़ पर, हमें यूं न जाना छोड़कर, मेरे हम सफर मेरे हम सफर। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा, जब इसको आप सुनेंगे इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको उस दर्द का, उस प्यार का, उस मोहब्बत का एहसास होने लगेगा।

मुझे राह में किसी मोड़ पर यूं ही चलने देना छोड़कर मेरे हम सफर। लता जी की आवाज में और साथी थे मुकेश साहब, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म मेरे हम सफर से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में। जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ यादें हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं और कुछ पल सिर्फ हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। इसलिए गुजरे हुए लम्हों पर अफसोस करने से ज्यादा आज को खूबसूरत बनाना जरूरी है। इसी गहरे एहसास को अपने अल्फाज और सुरों में डालता है फिल्म आपकी कसम का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये फिल्म आई थी 1974 में। इस अमर नगमे को अपने दिलकश

शाबाश से सजाया है किशोर कुमार साहब ने और इसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। दोस्तों हमें हमेशा यह लगता है कि कोई तो हो हमारी जिंदगी में जो हमें आगे लेकर के जाए, यही उम्मीद होती है। जिंदगी में हर मुलाकात की कद्र कीजिए, हर रिश्ते को मोहब्बत से निभाइए और हर दिन का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता चलता है लेकिन अच्छे रिश्ते और प्यारी यादें उम्र भर दिल को रोशन करती रहती हैं। तो आइए ऐसे ही नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अरुणिमा की इस महफिल में किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा इस महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:40 और 32 सेकेंड। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती कई बार बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जो दिल को सुकून दे जाते हैं और एक अलग एहसास जगा जाते हैं। किसी अपने की मुस्कान, किसी खास इंसान का साथ और एक प्यारा सा एहसास, यही तो वो पल हैं जो आम वक्त को, आम दिनों को भी यादगार बना देते हैं। इसी खूबसूरत एहसास को बयान करता है अगला ये बेहद खूबसूरत कलाम। कहते हैं खुशियां हमेशा किसी बड़ी मंजिल के बाद नहीं मिलती, कभी कभी वो हमारे साथ चल रहे लोगों और उन अनमोल लम्हों में मिलती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि यही यादें जिंदगी को खास और खूबसूरत बना देती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत गजल है, एक बेहद खूबसूरत ये गजल है जो है फिल्म साथ साथ से, और ये फिल्म आई थी 1982 में। आवाजें हैं हम सब के चहेते जनाब जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह की। इस गजल को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कुलदीप सिंह ने। तो आइए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस दिलकश एहसास का लुत्फ उठाते हैं।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जगजीत सिंह साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था, बल्कि ये एक गजल थी फिल्म साथ साथ से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में जिंदगी में कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं होते, बल्कि हमें धैर्य, उम्मीद और रिश्तों की अहमियत सिखाते हैं। कभी किसी अपने की याद, कभी किसी सपने के पूरा होने की चाह, यही छोटे छोटे एहसासात हमारी जिंदगी को एक खूबसूरत कहानी बना देते हैं। इसी गहरे जज्बात को अपने मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले अल्फाज में पेश करता है अगला ये बेहद खूबसूरत कलाम एतबार फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1985 में। एतबार फिल्म का ये बेहद खूबसूरत कलाम, बहुत ही प्यारी ये गजल। उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ मंजिलें देर से मिलती हैं, लेकिन जो लोग सब्र और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए हर इंतज़ार एक नई उम्मीद बन जाती है, एक नई सीख बन जाती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत गज़ल के साथ हम आगे बढ़ते हैं भूपेंद्र सिंह और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा है हसन कमाल साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से इसको संवारा है, मौसीकी से संवारा है बप्पी लहरी साहब ने।

किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। भूपेंद्र और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये गजल थी फिल्म एतबार से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपको कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, हमें जरूर बताइएगा अपने पैगामात के जरिए और अपने ईमेल के जरिए। उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। दोस्तों कहते हैं जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में नहीं बल्कि अपनी पसंद, उनकी ख्वाहिशों और उनके एहसासात की कदर करने में है जिसे आप चाहते हैं, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। जब रिश्तों में समझ, सम्मान और अपनापन होता है तो साधारण पल भी बेहद खास बन जाता है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म सफर का। आवाज है मुकेश साहब की और इसे लिखा है इंदीवर साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने।

फिल्म सफर के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अरुणिमा से आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचे हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया ब्यौरा हमारे संवाददाता से
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत मां तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति

0: भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुदरा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के कोटा में श्री गडकरी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन प्वाइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87,000 मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल है। खोपरा की पूरी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जाएगी। स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अमेरिकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हमलों से युद्ध विराम समाप्त हो गया है और अमेरिका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Melbourne, Australia on the second leg of his three-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival yesterday. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora, which is an important pillar of India-Australia partnership. During his visit, Mr. Modi will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. India has expressed deep concern over the recent attacks and escalation of tensions in West Asia. The External Affairs Ministry said that these developments risk undermining regional peace, security and stability. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions and ensure protection of civilians as well as the uninterrupted flow of energy supplies and commerce. New Delhi has urged the parties to return to dialogue and diplomacy to achieve a peaceful and lasting solution to the conflict. This comes after the US carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. India and Myanmar have discussed bilateral security cooperation and reviewed progress under bilateral dialogue mechanisms. The two-day 23rd national level meeting between India and Myanmar concluded in New Delhi yesterday. Ministry of Home Affairs said that the two sides discussed cooperation in combating transnational crimes, including terrorism, insurgency, narcotics trafficking, arms smuggling, human trafficking, wildlife trafficking, cybercrime and other forms of organized crime. The Indian Space Research Organization, ISRO, has successfully conducted a critical integrated main parachute airdrop test, IGNAT, for the Gaganyaan missions at the Aerial Delivery Research and Development Establishment, ADRDE, drop zone in Shyopur, Madhya Pradesh. ISRO said that the objective of the test was to qualify the main parachute for its structural integrity and design margins under the maximum expected load conditions in the first uncrewed Gaganyaan G1 mission. India is holding on to its crown as the world's fastest growing major economy, with the International Monetary Fund, IMF, projecting it to grow at 7% during the current calendar year. IMF's flagship biannual report, the World Economic Outlook Update, released yesterday, projected India's gross domestic product to moderate in the next calendar year to 6.4%. Center has approved the procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare said that this will ensure better price realization for producers and protect them from distressed sales caused by market fluctuations. The National Testing Agency, NTA, has released advanced city intimation slip for CSIR UGC NET June 2026. The exam will be held on the 17th and 18th of this month. Students are advised to download their slip from the official website www.csirnet.nta.nic.in to know the allotted exam city. Uttar Pradesh government launched the cashless health scheme for teachers as well as the non-teaching staff in the state. Chief Minister Yogi Adityanath launched the Chief Minister's Teachers Cashless Medical Scheme in Varanasi, which will offer medical coverage of up to 5 lakh rupees to more than 15 lakh teaching staff. The India Meteorological Department has said that the conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into remaining parts of North Arabian Sea, Rajasthan, Haryana and Punjab during the next 2 to 3 days. IMD's forecast heavy to very heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and West Uttar Pradesh today. India's under 23 women boxers delivered a commanding performance at the Asian under 19 and under 23 boxing championships, with 9 boxers advancing to the semi-finals to assure medals after a strong showing in the last 8 stage bouts held in Jakarta. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 8 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और दोस्तों कहते हैं कि रात कितनी भी गहरी हो सवेरा जरूर आता है मुश्किलों के बाद ही इंसान को नया रास्ता नजर आता है क्योंकि जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तभी आप सबसे बड़े विद्वान साबित होते हैं जब आप उन मुश्किल

हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं हर दिन हर नई सूरज की रोशनी के साथ, और हर दिन का आगाज हम उस खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है। वही सब कुछ करने वाला है, वही हमें देने वाला है, वही हमें जिताने वाला है, वही हमें आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस ईश्वर, उस खुदा, उस गॉड के नाम से करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, और उन्हीं से दुआ करते हैं कि हमारी मुश्किलों को आसान कर दे और हमें तमाम परेशानियों से बाहर निकाल दे। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है फिल्म पैगाम का, मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इसी नगमे की

मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा। जी हाँ, जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता, कभी रास्तों में मुश्किलें आती हैं तो कभी हालात हमारे हौसले को परखते हैं।